टीका लगवाना है, गोश्त में टीका लगवाना, रोजा नहीं टूटता, बशर्ते कि विटामिन का टीका ना हो और ग्लूकोज की ड्रिप ना हो। इंसुलिन का टीका शुगर के मरीज के लिए, रोजा नहीं टूटता। दमे का स्प्रे इस्तेमाल करना, रोजा नहीं टूटता। लेकिन ये याद रखे, स्प्रे दो किस्म के हैं, एक है हवा की शक्ल में, एक है पाउडर की शक्ल में। जो हवा की शक्ल में मैदे तक नहीं पहुंचता, जो पाउडर की शक्ल में मैदे तक पहुंच जाता है, तो पाउडर वाले हजरात एहतियात करें, रोजे की हालत में पाउडर वाला स्प्रे इस्तेमाल ना करें। अगर उनके पास पाउडर वाला स्प्रे है तो वो गैस वाला लें तब्दील करके डॉक्टर से रजू करने के बाद। ऑक्सीजन लगवाना, रोजा नहीं टूटता। मुंह में मक्खी अगर दो बार चला जाए, रोजा नहीं टूटता। मुंह से खून निकल आए या नकसीर फूट जाए, रोजा नहीं टूटता। भूल की वजह से खाना पीना नहीं टूटता रोजा। चोट के जरिए से खून का जिस्म से निकलना, खून देना, वो ने तफसील बयान कर दी है, रोजा नहीं टूटता। गुसल करना, नहाना, स्विमिंग करना, रोजा नहीं टूटता, बशर्त है कि स्विमिंग करने वाला पानी ना निकले। खुशबू लगाना, रोजा नहीं टूटता। पखाने के रास्ते दवाई इस्तेमाल करना, सुपोजिटरी, रोजा नहीं टूटता। शर्मगाह के जरिए से दवाई इस्तेमाल करना, रोजा नहीं टूटता। पेट में कोई नाली लगाना, रोजा नहीं टूटता। सिवाय नाक के अंदर से जो नाली डाली जाती है, मैदे में जाती है, से रोजा टूट जाता है, क्योंकि मैदे में जाती है वो। इसके लिए पेशाब की नाली लगवाना, रोजा नहीं टूटता। फोड़े या जख्म या नाखून काटना, रोजा नहीं टूटता। उल्टी का खुद ब खुद आना, रोजा नहीं टूटता। इहतलाम अगर हो जाए, इहतलाम से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि वो उसके अपने अख्तियार में नहीं। चार शर्तें बयान की थी उसमें, बेअमल अपने करने से और इहतलाम में इंसान का अपना हाथ नहीं होता। जिस्म पर या सर पर तेल लगवाना, रोजा नहीं टूटता। जेल, दर्द के लिए जेल लगाना, रोजा नहीं टूटता। खून लेबोरेटरी के लिए टेस्ट के लिए देना, रोजा नहीं टूटता। दांत निकलवाना, रोजा नहीं टूटता। कितनी हो गए, 32 हो गए। मिर्गी का दौरा पड़ना, रोजा नहीं टूटता। बेहोश हो जाना, अकुपंचर का इलाज करवाना। गरारे करना, रोजा नहीं टूटता, बशर्ते कि गरारे की वजह से हल्क के जरिए से पेट में वो केमिकल ना जाए, वो पानी अंदर ना जाए। जख्मों पर टाके लगवाने, रोजा नहीं टूटता। भाप लेना, रोजा नहीं टूटता। जुओं की दवा लगाना, रोजा नहीं टूटता। मेकअप करना, रोजा नहीं टूटता। फसलों में स्प्रे छिड़कना, जानवर जिबह करना, बाल मुंडवाना या कटवाना, बिच्छू या सांप मारना, आंखों में लेंस लगाना, मेहंदी लगाना, दाग लगाने से इलाज करवाना, दाढ़ी मुंडवाना हराम है लेकिन रोजा नहीं टूटता। गाली देना हराम है, गीबत करना हराम है लेकिन रोजा नहीं टूटता। तकरीबन 50 चीजें मैंने बयान की हैं। कोई चीज रह गई है, कोई सवाल है इसके मुताबिक? तकरीबन सब बयान कर दिए हैं। अच्छा, रोजे, जिन चीजों से रोजा टूट जाता है उसमें तीन शर्तें होना जरूरी हैं। तीन शर्तें, अगर ये तीन शर्तें पाई जाएं तो रोजा टूट जाते, वरना नहीं टूटता, याद रखें। पहली शर्त है आलिमन, इल्म के साथ, वो जानता हो कि चीज से रोजा टूटता है, या इस वक्त में मैंने कुछ खाना पीना नहीं है। नंबर दो, जाकिरन, उसे पता हो, भूल की वजह से नहीं, भूलने से रोजा नहीं टूटता। और नंबर तीन, मुकरहन, इकराह की हालत ना हो, खुद इख्तियार हो, अपने इख्तियार में, अपनी मर्जी से उसने कोई मुफसिद जो रोजे के जिन चीज को रोजा टूट जाता है उनका अगर कोई भी इर्तिकाब किया है तो अपने इख्तियार से किया हो, किसी ने जबरदस्त की है तो रोजा नहीं टूटता।